0: 个呀呀队，喽，哎呦哎呦，问对手的，呀，
1: 我等你 ，Radio Tiger 来了。
2: यूहो रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज गर्जन सस्नदै बाजे रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम अहिले बिहानको 8 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का साथमा
2: केपी पोलिक्लिनिक भ्रिगाउँ बजार बर्दिया

0: आवाज हो सस का र संस्कृति को संवाह सनातन रेडियो नेटवर्क को
1: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैं बाज्ने।

0: चल से अकल का नारा है रे तू।
1: चल गई हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। तो धर्मा तू किस खेत की मूली है जरा पता।

0: खेत की मूली है सारा पता उड़ती फिरती उड़ती फिरती
1: I'm gonna take a look at the camera.

0: उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा तो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या,
2: कपड़ा के तब रस ले।